0: It's 1:30 PM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज़ है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन।

0: तेरे हैं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशिया, हमारे साथ रहे। हमारे
1: इल्म आगाही तंजो मजा और खुशहालियों इस्तेहकाम का हसीन संगम, आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: Radio Ama Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम वो तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की नशरियात। हमारे साथ रहिए।

0: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है।
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Welcome to Radio Aman 88.4.

फोर में अखसाद हवाई से पास लेडीज एंड जेंटलमैन द टैकू सिदन को दे अमन रेडियो 88.4 अरविदन को जिला टांग को सिदन को ज दितासु कुर्बा ज दितासु आरजे ज दितासु डीजे द वन एंड ओनली आरजे तासीर मेरा इस्माइल खान वाले ग्लोबल एफएम 91 के सुनने वाले सभी को कहता हूँ जी आयनो साथ बिस्मिल्लाह वत बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम की वे हाल है की वे जाले की वे वदे वे ठीक की वे खैर नाले वे जबरदस्त सी वे जिंदगी चंगी गुजरती पई है जी लेडीज एंड जेंटलमैन दिस टाइम इज टी टाइम विद केसन प्रोडक्ट केसन लिमिटेड केसन जी केसन नेचुरल पाकिस्तान लिमिटेड and I am the host and I am the DJ Tasir पूर्व प्रोग्राम के साथ एक मरतबा फिर से हाजिर हूँ पुरजोश हूँ और बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश हूँ. मौसम बदल रहा है, मौसम में बहुत सारी चेंजिंग आ रही है, बहुत सारे इलाकों में इस वक्त शदीद किस्म की बारिश शुरू है. तो जहाँ जहाँ बारिश शुरू है, जहाँ जहाँ आंधी और तूफान है, उन सभी को कहते हैं कि स्टे सेफ. जहाँ पर धूप है, जहाँ पे गर्मी है, गई तब वही चे बूझी तेन मड़ा चेहरे उस बार दलता चेन दलता खत्म रहा वाला

लेडीज एंड जेंटलमैन, किशन के साथ एक मरतबा फिर से हाजिर हूँ। बहुत सारी बातें लेकर, बहुत सारी चीजें लेकर, बहुत सारी फवायद आपको बताने वाला हूँ। देख ले जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताएंगे फवायद, और वो बताएंगे कि क्या जादू है यार, किशन है जादू है, परेशान नहीं होना किशन।

0: जी लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, गाल में एक रहना पीएम कि अगर कोई तो कोई ये दसे कि ये में प्रोडक्ट ऐसा तो कोई दसे ने जिधर प्रोडक्ट तू सजरे ले इस्तेमाल करे सो तब ते तुम्हारी चेहरे ते पसीना ना सी जी जिधर कोई ये तो कोई आधा है कि ये में प्रोडक्ट इस्तेमाल करो जाने नल पसीना बनती ना जी क्यों क्योंकि पसीना आंदे तब चिपचिपाहट होती है यानी पसीना आंदे तुम्हारा चेहरा जिहड़ा है वो आयल थी वेने अच्छा पसीना आंदे तो पसीने की वजह तो की थी वेने पसीने की वजह तो ये थी वेने कि सही चेहरा जिहड़ा है उसके उत्ते आयल निकल आंदे आयल जिहड़े ले निकल आंदे तब बाबा की थी वेने मसाइल बढ़ देना तब सजनो बिल्कुल तुसा परेशान नहीं थी होना परेशानी कुछ छोड़ देना है क्यों जो मैं तो कुछ ऐसे सारा चुप पसीना आसी पसीने ने आना है पसीने को रोकना नहीं अगर कोई बंदा पसीने को रोकना चाहता है पसीने पसीना क्यों निकलता है पश्तो ही दसे सा उर्दू ही दसे सा बल्कि एक गाल जरी है मैं तो आपको उर्दू ही दसे सा उसी वजह यह है कि मैं तो आपको समझे सा आज स्किन जेड़ी है फेस जेड़ा है चेहरा जेड़ा है ये होंदा की में है अगर तो आपको ये लगता है कि ये मांस है यानी ये गोश्त है तो गोश्त दे तले हड्डी है तब बिल्कुल इवें नहीं ये बिल्कुल भी इवें नहीं क्यों उसकी वजह मैं तो दसा अगर इंसान का चेहरा इंसान की स्किन जेड़ी है वो सिर्फ इवें थी वजह कि उतू मतलब गोश होवे यानी मांस होवे ते मांस दे तले इंसान दा के होवे डायरेक्ट मांस दे तले सही इंसान दा मांस जेड़ा है उसे तले हड्डी होवे ता ए सिर्फ इतना नहीं होंदा मैं पूरी डिटेल तो समझे सा एक ही गाल मैं समझे सा वो गालियां तो दसे सा वो गालियां तो समझे सा जेड़ी आजकल पहले तुसा नहीं समझी वदे जेड़ी आजकल पहले तो जिसे बारे को नहीं पता मैं तो उसके बारे दसे सा जो इंसान दा जेड़ा चेहरा है ये होंदा किवें है लेडीज एंड जेंटलमैन अल्लाह ताला ने इंसान को बढ़ाया कुछ ई तरंग दे है गोल के ओए मैं तजेड़ा इंसान दा जेड़ा चेहरा है इंसान दा जेड़ा स्किन है उसको अगर तू देख वंजो ना उसको देखो पहले एक मांस है पहले एक गोश है उस मांस दे तले के शे मांस को देख सो उस दे तले के शे आवे दी मांस दे तले सही आवे ने तवाड़ा इंसान दा जेड़ा इंसान दी जिस्म दी चर्बी होती है अच्छा चर्बी होती है ये चर्बी जिहड़ी है इस दे तले अल्लाह ताला ने इंसान दा जिहड़ा चेहरा बनाया इस दे बाद डायरेक्ट हड्डी नहीं होती बिल्कुल इस दे बाद डायरेक्ट हड्डी कौन है अगर तुहाकू कोई लग तुहाकू लगदा ही में या कोई डसेंदा ही में कि भाई जिवें ए तुहाडा मांस है जिस तरह आपके ये गोश है चेहरे का गोश है ना ये स्किन जो है ये नरम गाल वाल जो है इसके नीचे डायरेक्ट आपकी हड्डी नहीं है मौजूद खवातीन हजरात याद रखे इसी के नीचे अल्लाह ताला ने इंसान के चेहरे का दूसरा हिस्सा रखा हुआ है और दूसरा हिस्सा किस चीज पर मुनहसर है किस चीज पर मुश्तमिल है दूसरा हिस्सा जो है मौजूद खवातीन हजरात उसमें इंसान का जो स्किन है वो सिलसिला शुरू हो जाता है दूसरा हिस्सा मौजूद खवातीन हजरात शुरू हो जाता है चर्बी का ये चर्बी ही हुआ करती है जो इंसान के चेहरे से आयल यानी तेल की दार की तरह निकलते हैं इसको अगर मैं मेडिकल की जुबान में बताऊंगा तो सब कॉन्टेंट्स इसको कहते हैं ये वॉल्यूम जो होता है यानी फैट हुआ करती है चर्बी हुआ करती है और ये चर्बी जो है इंसान की चेहरे की चमक बढ़ा देते हैं इसके तीसरे हिस्से में पहला गोश दूसरा क्या वो चर्बी अब तीसरा सुनिएगा तीसरे का नाम है SMAS इसका नाम SMAS जो है ये क्यों है ये इस वजह से ये एक फार्मूले के तौर पर मौजूद है अच्छा ये एक ऐसी लहर है जो इंसान का जो चेहरा है उसकी स्ट्रक्चर को महफूज रखता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो महफूज रहता है इंसान का जो ये जो आप लोग देखते हो ना कि दाने निकल आते हैं दाने निकल आने की वजह से कुछ लोगों के चेहरे होते हैं जगह जगह से फूल जाते हैं जगह जगह से सूजन आ जाती है वो सूजन जो है वो इस चीज की SMAS की डिस्टर्बेंस की वजह से आते हैं तीसरी जो चीज है वो मसल्स है ये बिल्कुल इंसान के चेहरे में मसल्स भी मौजूद है अगर किसी को नहीं पता तो हमसे पूछ ले हम बताएंगे कि इंसान का जो चेहरा ये फेस जो है जो तीन परतें हैं गोश्त वाला इसके अलावा फैट वाला SMAS वाला थर्ड हो गया फोर्थ में मसल्स आते हैं ये मसल्स जो हैं ये क्या काम करते हैं ये मुकम्मल तौर पर आप मुस्कुरा रहे तो ये मसल्स में खिंचाव आता है ये मसल्स वो तासुरात आपके जाहिर कर देता है तीसरे नंबर पर प्रोटियम्स हैं ये इंसान का क्या कर देता है ये इंसान का ओवरऑल जो महसूसात हैं उन लेयर्स को हड्डी के ऊपर ये आ जाता है और ये उसको महफूज करता है अब ये आखिरी चीज़ ये कितने लहर हो गए एक गोश्त वाला दूसरा फैट वाला, तीसरा एस एम ए एस वाला, चौथा मसल्स वाला, पांचवा ये हड्डी की लहर वाला, छठे नंबर पर आपकी हड्डी आ जाती है। और अब सवाल पैदा ये होता है कि तमाम तर लहरें जो हैं इनको भी कुछ चाहिए ना, इनको कुछ खुराक चाहिए, इनकी डिमांड भी एक कुछ मिले। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, बातें बहुत वो हो जाती हैं। मैं जिस टॉपिक पर आपको लेकर आना चाहता हूँ वो टॉपिक यही है कि इंसान का जो चेहरा है उन तमाम में ये जो आयल खारिज होता है, इजाफी तेल खारिज होता है, यानी स्किन आयली हो जाती है, पिम्पल्स निकल आती हैं, ये तमाम तर चीज़ें क्यों होती हैं? एक तो वजूहात इसकी ये है कि धूप में आप निकलते हैं, गर्मी की शिद्दत में आप निकलते हैं, आप जब चेहरा जो है वो पसीना करता है, पसीने के बाद आपके चेहरे पर गर्द गुबार आती है, आती है ना, टांग वालो टक वाल दिरता हुआ है, टक तो चे उसे बाजार तो चे लार सुधारता हुआ है, गर्दी ना बच किधर सु डेरा इस्माइल खान वालो, आपको तो पता है, आप तो माशाल्लाह डेरा इस्माइल खान में आप किसी भी रोड पर निकल जाए इतने गर्द गुबार है कि मत पूछे। अब ये क्या करता है, ये गर्द गुबार खिंच खिंच कर हमारी तरफ आता है, हमारी स्किन पर, हमारे फेस पर लगता है। अब ये फेस और हाथों में जो फर्क है ये आपको क्या लगता है? हाथ जो है ये भी मुतासर होते हैं, पैर जो है वो भी मुतासर होते हैं, लेकिन स्किन फेस जो है ये क्यों ज्यादा मुतासर होता है? पहली बात तो ये है कि इस पे डायरेक्ट ये चीजें लगती हैं। सेकंड, ये जो है ये बहुत सेंसिटिव चीज है, चेहरा जो है इंसान का बहुत सेंसिटिव है, बहुत नाजुक है। अब ये चीजें जो हैं ये मुतासिर होती हैं। अब दाने जो हैं चेहरे पर क्यों निकलती हैं? ये जो मसल्स हैं जब इनमें मिट्टी चली जाती है, सॉरी मसाम है, मसल नहीं, मसाम की मैं बात करो, ये चिदकम चुड़ाऊना है गुंदेदा दखली चिकम इंसान जिसम नरवुजी दकम सुरविदी वाड़ वाड़ सुरवी चिकम उन खलर वुजी द चिकल खावरे उरगाड़ी से खावरे ची उरगाड़ी सी बेचू उसी खावरे ची ग्रान वर विद उनको उरगाड़ी सी नु चेहरा चिकुम अदा द मसामुना चिकुम दी चेहरे वाल द बंद सी, ये मसाम जो है ये बंद हो जाते हैं। ख़वातीनों आज़ाद, चेहरे के मसाम क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। जब चेहरे के मसाम बंद होते हैं तो फिर क्या होता है मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनों आज़ाद? होता ये है
1: अपलोड्स की नोटिफिकेशन।
0: अच्छा जी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये ताज़ा तरीन अपडेट वाली बात जो है वो आगे चल के हम खुद कर लेंगे। कि ताज़ा तरीन अपडेट सुनने के लिए आप सुनते रहें केसन रेडियो को, क्योंकि केसन रेडियो आपको ताज़ा तरीन अपडेट देता रहेगा। मौसी ख़वातीन हज़रात, टॉपिक पे आता हूँ। ये जो मैं बात कर रहा था कि ये जो चेहरा है, ये जो आपकी स्किन है, इसकी जो मसाम है, इसमें जब मिट्टी आ जाती है या तो ये पहला स्टेप इसका क्या होता है, ब्लैक हेड्स की सूरत में निकल आता है। अक्सर आप देखते होंगे कि लोग जो है ब्लैक हेड्स को हटाने के लिए मुख्तलिफ पीनों का इस्तेमाल करते, जोर देते हैं और बड़े तकलीफ दे अमल से गुजरते हैं और मसामों से गंद निकलता है, कचरा निकलता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा इस वक्त मुझे जो लोग सुन रहे हैं, एक काम कीजिएगा, एक आयना उठा लीजिएगा, शीशा जिसे बोलते हो, ये खैर शीशा नहीं होता, ये आयना होता है जिसमें आपका चेहरा आपका अक्स नजर आता है, उसको देखिएगा, उसको देखकर कोई चीज उठा लीजिएगा जो स्पेशली मैं आपको ये नाक जो है ना पसे सर चुकुमादा जब आप नाक के सर के ऊपर से गुजारेंगे या जो ब्लैक हेड्स है उसको जोर देंगे किसी चीज से तो वो आपके उससे कचरा से निकल आएगा, गंद सा निकल आएगा। ये पीप नहीं होता, ये पस नहीं होती, ये क्या होता है, ये दाना भी नहीं होता। अगर कोई आपको ये कह दे कि ये दाना है, नहीं ये दाना नहीं है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो है ये डिफरेंट दो चीज़ें हैं जो चेहरे को मुतासिर करती है, चेहरे के मसामों को मुतासिर कर देती हैं। और ये क्या कर के आ रही होती है, ये कर ये हो रही होती है कि ये मसाम बंद होते हैं, धीरे धीरे जब ये मसाम बंद होते हैं अब ये फाजिल मादा जो है जो आपके चेहरे में से निकलता है ये पसीने की सूरत में, जो नापसंदीदा चेहरे के लिए चीज़ें जो पसीने के जरिए से चेहरे से निकलती है वो क्या हो जाता है, उसका सिलसिला रुक जाता है। उसका सिलसिला जब रुक जाता है वो अंदर जमा होती जाती है, जमा हो जाती है, वो पिंपल्स की शक्ल में जाहिर हो जाती है, पिंपल्स की शक्ल में ये बाहर निकल आती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इतनी बड़ी तमहीद, इतनी लंबी बातें आखिर मैं क्यों कर रहा हूं? सिर्फ ये बात आपको बताने वाला हूं कि जनाब मन मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात पर ये जो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जो इस वक्त सुन रहे हैं, यानी किसन का प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं, किसन का एक ज़ाफ़रान पर मबनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खुसूसन उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जिनके चेहरे जो हैं उन पर दाने निकल आते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, जो आयल ज्यादा करते हैं। आम फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि गर्मी में क्रीम मत इस्तेमाल करो, गर्मी में अगर क्रीम आप इस्तेमाल करोगे तो गर्मी में होगा क्या, गर्मी में ये होगा कि آئل کی جو ایگزسٹنس ہے وہ بڑھ جائے گی. آئل جو ہے گڑبالی چکم دی دب اور سر جاتی جی گرمی چکریمان میں استعمال ہو کو دا کریم چکم دا خلق وائی دا خلق وائی سدا نو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا معزز خواتین و حضرات, میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گرمیوں کے موسم میں اگر آپ استعمال کریں گے کوئی کریم تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ چپچپاہٹ زیادہ کرے گا, آئل زیادہ نکلے گی. لیکن میں آج کریم ہی پر پروگرام کر رہا ہوں, میرا ٹاپک کریم ہے اور کریم بھی کیسن کا ہے. کیسن کا کریم کیا کرے گا؟ کیسن کا کریم کرتا یہ ہے معزز خواتین و حضرات, اسپیشلی کیسن کا زعفران ہلدی اور سندل والی جو کریم ہے یا زعفران کریم آپ عام روٹین میں اس کو کہتے ہیں. زعفران کریم کیا کام کرتی ہے معزز خواتین و حضرات؟ زعفران کریم جو ہے جس کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کی جو آئل ایگزسٹنس ہے یا آئل جو خارج ہو رہی ہے یعنی تیل چکم اردا وزی یا گڑ والے چکما چہرہ کئی تو وہ اس کے لیے کیا کام کرتا ہے؟ اس کے لیے معزز خواتین و حضرات یہ کام یہ کر رہے ہیں کہ اس کا آئل نکلنا جو ہے یہ آئل نکلے گا, آئل نہیں نکلے گا یہ فیٹ بڑھ جائے گا, فیٹ بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر یکنی بنے گی. تو ایکنی سے بچنے کے لیے آپ کے چہرے سے آئل کا خارج ہونا انتہائی ضروری ہے. معزز خواتین و حضرات آئل کو خارج کیجئے گا, چہرے کا جو آئل ہے وہ اس کو نکالیے گا. اس کو کیسے نکالیں گے؟ اس کو ایسے نکالیں گے کہ آپ یہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے یعنی کیسن کا جو زعفرانی کریم ہے اس کو جب آپ استعمال کریں گے اس کے استعمال سے آپ کے چہرے سے جو یہ جو چپچپاہٹ ہے, یہ جو آئل خارج ہونا ہے یا آئل اسکن ہے اس کو یہ کنٹرول کرے گا, ایک حد میں رکھے گا. دیکھیں یہ نہیں نکلے گا تو دانے نکلیں گے, یہ نہیں نکلے گا تو چہرہ جو ہے وہ خراب ہوگا, چہرے میں پوٹ پڑیں گے. یہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے آپ کے یہ کیا ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں جی, پیروں کی تلیاں جو ہوتے ہیں دا شوچے دغا نہیں شورتوائی پندی چکمی جو وہ چاو دلی سی دا مخم مدا سے وہ چاو دلی سی نو دی دی پارا دی چہرے نا غوڑ والے چکم دی چہرہ پا غوڑ والے کئی کوئی وہ حد پورے پہ گئے. جب آپ کا چہرہ ایک حد میں رہ کر آئل خارج کرے گا, ایک حد میں رہ کر اس کا آئل ہوگا تو پھر سب کچھ ٹھیک رہے گا. اچھا سیکنڈ جو چیز ہے, سیکنڈ جو چیز میں نے ذکر کیا کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں, چہرہ ہم نے فریش ہو کر دھو لیا, بالکل جب آئینے کے سامنے ہم چلے گئے یار کیا زبردست میرا چہرہ لگ رہا ہے, ماشاء اللہ کہتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں, بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں, بڑا زبردست لگ رہا ہوں. میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے صحیح اب یہ کرنا ہے کہ میں ابھی بازار جا رہا ہوں, بازار جاتی ہی میں نے کرنا کیا ہے, میں نے کرنا یہ ہے جی بازار جا کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بازار جب جائیں گے تو ایسے ہی چمک کریں گے, لیکن بائک کو سٹارٹ کرتے ہوئے ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں گلی کے موڑ پر پہنچتے ہیں تو وہ چہرے میں جتنا چمک ہوا کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پسینہ نکل آتا ہے. اب پسینہ نکل آ رہا ہے, یہ آئل نکل آ رہا ہے تو اس نے کیا کر دیا, چہرے کو ہمارے کیا کر دیا, بلیک کر دیا. معزز خواتین و حضرات یہ آئل یہاں پر نہیں کر رہا, یہ چہرہ جو ہے ایک تو آئل زیادہ خارج ہو رہا ہے, لیکن جب ہم زعفرانی کریم لگاتے ہیں, زعفرانی کیسن کا زعفران والا کریم استعمال کرتے ہیں, زعفران سوپ استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا کام کر دیتا ہے؟ وہ کام یہ کرتا ہے کہ جی وہ چہرے میں جو چپچپاہٹ ہوتی ہے, چہرے کا جو آئل خارج ہوتا ہے وہ بالکل 101% کنٹرول میں آ جاتا ہے اور وہ نکلتا تو ہے لیکن ریئیکشن اس کا نہیں ہوتا.

लेडीज एंड जेंटलमैन, जिल्द को रखिए ठंडा। किससे ठंडा रखेंगे? अब जिल्द हमारी ठंडी कैसे रखेगी? ये जो मैं बता रहा हूँ, केसन कई जाफरान क्रीम जो बता रहा हूँ, और जाफरान हल्दी और संदल वाली क्रीम जो बता रहा हूँ, ये कैसे ठीक करेगा? या ये मास्क जो है, ये फेस वॉश जो है, ये क्रीम जो है, ये सोप जो है जाफरान वाला, ये कैसे काम करेगा? मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अगर आप किसी से भी पूछ लें, हुकमाए हज़रात जो है उनके पास अगर चले जाएं कि जी गर्मी का तौर बता दीजिएगा, तो वो कहेंगे संदल वाला शरबत इस्तेमाल करें। अच्छा जी, संदल वाला शरबत इस्तेमाल करें ताकि आपका अंदरून मैदा जो है ये बिल्कुल ठीक रहे, ठंडा रहे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, यही संदल अगर आपको एक ऐसे प्रोडक्ट में मिल जाता है जिसको आप इस्तेमाल करें, फेस के लिए इस्तेमाल करें, और वो फेस को क्या पहुंचा दे, ठंडक पहुंचा दे, तो क्या वो फायदा नहीं देगी? 101% फायदा पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि संदल की तासीर जो है वो इंतहाई ठंडी होती है। गर्मी की वजह से जिल पर होने वाली जो जलन है, सुर्खी जो है, खारिश जो है, इसको फौरी सुकून देती है। ये बिल्कुल आपका पुरसकून हो जाता है और आप बिल्कुल ठंडक महसूस करते हैं, आपका चेहरा ठंडक जो है महसूस करता है, और साथ ही साथ ये जो गर्मी की वजह से इजाफी तेल और मसाम जो है वो बंद हो जाते हैं, तो उसको भी ये कंट्रोल कर देता है। सेकंड जो है वो ये है कि हल्दी के हवाले से आप इस्तेमाल करें, हल्दी के हवाले से अगर मैं प्रोग्राम करना शुरू कर दूं, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, 4 से 5 घंटे मुझे कम पड़ेंगे हल्दी के फवायद बताते हुए। हल्दी अगर आप औरों से ना पूछें, सिर्फ अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लें कि हल्दी की क्या फवायद है, यानी हल्दी देखो तबील ऐसी खुशो और विदुन को पुश्तानी शिकम दी अगर कुरकमन से और दवाई कुरकमन पावाले सर मुशरान डेर से पाइजे दायो एंटीबैक्टीरियल यो एंटी बैक्टीरियल शायद दा हल्दी यानी दगा कुरकमन शिकम दा चिचिश पर इस्तेमाल कर फायदा दर कभी। पिंपल्स और दानों से अगर आपको छुटकारा चाहिए गर्मी और पसीने की वजह से जो मसाम बंद है, उसके लिए ये बहुत ही जबरदस्त फैंटास्टिक लाजवाब चीज है, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो आपका जो आपके चेहरे को जबरदस्त किस्म का बना देते हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म का आपके चेहरे की जो रंगत है वो बना देता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, थर्ड जो चीज़ है वो है ज़ाफ़रान। अब ज़ाफ़रान के हवाले से मैंने बात करनी है, मैं चाहता हूँ कि ज़ाफ़रान की मैं आपको कीमत बता देता हूँ। ज़ाफ़रान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपको इजीली कहीं से भी मिल जाती है, ऐसी चीज़ नहीं है। ये इसकी कीमत आप सुनोगे तो फिर पता चलेगा कि इसकी जो कीमत है, कीमत कितनी है, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इसकी कितनी ज़्यादा कीमत है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अगर किलो के हिसाब से मैं कीमत बता देता हूँ,

0: लेडीज एंड जेंटलमैन मैसेज आए हुए हैं। सर जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, हर लैंग्वेज में जुबान में आपका बहुत बड़ा फैन है। सर जी लव यू टू, आपने नाम नहीं लिखा, थैंक यू सो मच। दुआएं चाहिए मोहतरम आपकी, आप जो भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गरा हयात जिला टांग से मलिक एहसान, आप सर्विस वाला मुस्तफा खान हसनैन खान, गरा हयात वालो, गरा हयात वालो, सच्ची बताना अगर मैं आपकी तरफ आ जाऊं, आपके पास अगर आ जाऊं तो आपकी ये बता दें, पहले मुझे ये बता दें कि आप वाकई मतलब गाड़ी सर्विस करते हैं या फिर ऐवें मतलब नाम ही सर्विस वाला रखा हुआ है। चलिए जी कॉलर मेरे साथ है, बात करते हैं, बात करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम ताकी खान हुजूर।
0: चरण गौरूर जान चौकी हुकुम जी ने जड़गिया اختر زمان سے اب تک نچرنگ گئی شیو ٹک ٹاک کی طبیعت سے تشدر تھا الحمد للہ نن خوب خوش ہوں اختر زمان ٹپر تھا ہوا ہے ٹپر تو ہے نور خبر بچاتے در سے رکھو ٹپر تو ہوا ہے ڈیر خبر میں در تھا کڑے سے بوچ اتبا ماتا ہوا ٹپا ہوا ہے
1: ہاں
0: خوان نہ کرا خو پیسے با واپس را کے اللہ کچرنگا مجھا ایسے در کو کیس کیسن چچرنگا پیسے واپس در کے
1: اچھا
0: وی زمان دمینی جان

क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM. दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है, ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है, ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 FM।

ओके सी नो टेंशन राइस ऑफ फेस वॉश अवेलेबल दिची दमख शलादी पर आ रवाक ले छी केचरी दफ्तर त से मदरसी त से से गोड़े गिरे से मख मतर त जा शेख शले शी मजीदूर शी दमख खिरी लरी के विजी नबिल गुर जी मख मद चिंग चिंग वसला ओ या शक शले नो चुकम दे के दमख सुम रहा चुकम दे के ना खिरी दी जा गन दी चा लरी के वी खास मख मत सो फ्रेश वी तजा बु छी दमख ल चुकम दे के कुदरती चमक वर के विची सो रवाक ले छी जमग द नो टेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान राइस ऑफ फेस वॉश इंशाल्लाह कुरे खैसा रिजल्ट बदर के वी खा

0: ऐसे ही सेट पूछी वाला शो करो ना आपको अंदाज सुनाई से डेनवनसी फराहान। वैसे पूछी पूछी तो नहीं आती बट सुनना बहुत अच्छा लगता है इंशाल्लाह कहूँ बहार शेड्यूल बराबर फिलहाल से कम देखा ना खा जमा तबियत प्रोग्राम सिलसिला
1: रोजाना
0: वेरी नाइस ब्यूटी एंड स्वीट वॉइस